जी फिल्म आमने सामने में से निकाले हैं। जी हाँ, आमने सामने में से निकाले हैं। निकिती सैफ ने सस्तख का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में कल्याण जी आनंद जी के साज पर हमने पेश किए। क्या ख्याल है, आप भी हैं मैं भी हूँ, एवरग्रीन किशोर कुमार इस तरह से।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में आपको सुनाया गया, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, अब वो एक लाइफ और है मेरे पास, तुई दर्शन एन का, अलका याग्निक जी का। बस ये प्यारा लाइफ सुनिए, इस तरह से आ रहा है।

ये लाइव रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाए फॉन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम में दूरदर्शन एन का अलका याग्निक जी का वर्ल्ड फोरम थिएटर है। उन दिनों कांग्रेस खबाओ नाम था। आप चून है फॉन हिंदुस्तानी रेडियो पर, तो क्या ख्याल है, ये फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे। कौन नहीं देखा हुआ ये फिल्म, हरियाली और रास्ता 1962 शंकर जय किशन के साज पर।

हरियाली और रास्ता, ये शानदार गीत आपको सुनाए हैं। यह टाइटल सॉन्ग पेश किया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो निकितिन ट्विंस अस्तखा ये फिल्म में शंकर जयकिशन के साथ पर लता जी और मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, ये रोमांटिक सॉन्ग, क्या ख्याल है?

कई बार मेरे दिल के अपने दिल की पसंद को ये शानदार गीत चला फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। या क्या बात है, ओपन एयर के साज पर रफ़ी साहब और आशा जी ने कितनी फाइफ सस्तकोनी से 65 का ये गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और है ये।

ये हवाएं मस्ताना मौसम रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये शानदार गीत। चलिए एक गीत हम आओ प्लेयर में रखे हैं, क्या ख्याल? हाँ, इस तरह से सुमन कल्याणपुर है।

हाँ लता जी आपको सुनाए हैं, जी नहीं सॉरी, सुमन कल्याणपुर, सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए हैं चित्रगुप्त के साथ पर नहीं कहती 25 तक का ये गीत। चलिए हम आपको सुनाते हैं क्या ख्याल है ये।

काल छड़ी मैदान खड़ी फिल्म जानवर निकितिन फाइव इन सस्त शंकर जय किशन के साज पर है। तो लीजिए अब क्या खला ख्याल है अगर जमाएं ये चला दूं आपके लिए, आप भी हैं और मैं भी हूँ।

दिल पुकारे आरे आरे लता जी और रफ़ी साहब एस दे बर्मन के साथ पर फिल्म जुअल थीफ्स में से निकाल कर हम पेश किए आप सभी श्रोताओं के लिए। अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है, क्या प्यार में ये भी होता है कि जिस समय आप प्यार करते हो तो आपकी सांसें रुक जाती हैं? अच्छा, हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा। निर्लय आप ही लीजिए और चलिए सोनू निगम और अलका याग्निक जी ये दोनों मिलके आपको ये बयां सुनाते हैं कि सांस रुक जाती है या नहीं।

कि तुम मेरी बाहों में हो। अलका याग्निक जी और सोनू निगम जी मिलके आपको ये शानदार द्वैत सुनाए नदीम श्रवण के साज पर, और पेश हुआ फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म जीत में से निकाल कर हमने चलाए। उम्मीद है यह लवली गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा। और ये सांस लेने का सिलसिला की बात हमने की ना, अब इसकी निर्णय आप ही लीजिए कि कैसा हुआ होगा, कैसा होना चाहिए था। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलिए फिल्म क्रिमिनल की ओर जाते हैं। फिल्म क्रिमिनल तो आपने अवश्य देखे होंगे, जी हाँ, फिल्म क्रिमिनल में से निकाल रहे हैं और ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

फिल्म क्रिमिनल में से निकाले हैं जी नहीं, सोनू निगम नहीं, कुमार सानू, कुमार सानू का ये द्वैत अलका जी के साथ हम आपको सुनाए हैं। चलिए एक गीत हमने और प्लानिंग में रखे हैं और वो गीत है कि प्रेम प्यार मोहब्बत में कितनी हसरत होती, कितनी खुशी होती है, कितनी खुशियाँ लोगों को मिलता है, कहाँ तक सच है कहाँ लेके झूठ है, ये दोनों साहिबान आपको मिलके सुनाएंगे, यानी कि कुमार सानू और साधना सरगम, ये दोनों इसके बारे में आपको सुनाएंगे, बस सुनिए।

साधना सरगम के साथ। जी हाँ, साधना सरगम के साथ कुमार सानू आपको सुनाए नदीम श्रवण की लिखी हुई गीत, नहीं बजाए हुए गीत, समीर की लिखी हुई गीत। जी हाँ, समीर की लिखी हुई गीत और नदीम श्रवण ने बजाए हैं। चलिए कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं। आप चाहे जहाँ भी होंगे धरती पर, प्रेम प्यार मोहब्बत तो हमेशा होता है, चाहे धरती पर जहाँ भी होंगे। तो यही कहानी अलका याग्निक जी और कुमार सानू मिलके दोनों आपको सुना रहे हैं। बस ध्यान से सुनिए।

हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। ये प्यार मोहब्बत की दास्तां आपने सुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। लेकिन किशोर कुमार जी ये कह रहा है, आपने तो दिल के बातें की है, लेकिन मैं दिल से तारीफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही तरफ का है। किशोर कुमार जी आपको सुना रहे हैं, सुना बस इस तरह से आ रहा है एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी, आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए इस तरह से। गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा यहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन किशोर कुमार जी भी तारीफ करने से चुकता नहीं है, तारीफ ही तारीफ। लीजिए एवरग्रीन किशोर कुमार एक बार फिर से, तारीफ की तारीफ, तारीफ ही तारीफ।

बस आपने किशोर कुमार जी की तारीफ सुनी ना, फिल्म जंगल में मंगल में से निकाल कर, हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, फिल्म का नाम है जंगल में मंगल, उसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं। प्रेम प्यार मोहब्बत में कसमें भी खाते हैं, जी हाँ, पता नहीं आप कभी कसम खाए होंगे या नहीं, बस इसका निर्णय आप ही लीजिए या बसलेस आप ही कीजिए, मतलब लीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ ये कसम खाने की सिलसिला।

क्या बात है, अलका जी और उदित नारायण मिलके ये द्वैत आपको सुनाए हैं, ये कस्में खाने की बातचीत। तो मुकेश जी कह रहा है कि उन्हें तो थोड़ा डर लग रहा है, प्रेम प्यार मोहब्बत में मुकेश थोड़ा चंट है, तो वो कह रहा है और क्या कह रहा है, चलिए हम आपको सुनाते हैं।

मुझे रात दिन ये ख्याल है, फिल्म उमर कैद में से निकाले हैं। निकतिन इन शस्क का ये गीत इकबाल कुरैशी के साज पर हमने पेश किया, ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, लेकिन मैं थी मुकेश जी के बाद। हम ये गीत और आपको सुनाएंगे। जी हाँ, विज्ञापन से पहले चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

जानम देख लो दूरियां, उदित नारायण जी आपको सुनाई ये शानदार गीत फिल्म वीर जारा में से निकाल कर हमने पेश किए हैं। इसका म्यूजिक डायरेक्टर संजीव कोहली, लेकिन ये गाने जो हैं इस फिल्म का, ये इस फिल्म का के गाने कभी मदन मोहन जी ने बजाए थे। तो मदन मोहन जी संजीव कोहली का पिता है, जी हाँ, यानी बाप मदन मोहन, बेटा संजीव कोहली। तो बरसों बाद मदन मोहन के ना होने पर संजीव कोहली ने वही गाने के नए धुनों में और नए तोड़ मरोड़ के नए साज में सुनाए हैं आपको। इसका एक पूरा सीडी है किस तरह से गाना संजीव कोहली ने बनाकर, अपने पिता का गाना बनाकर और नए फिल्म में डाले, कभी आपको सुना देंगे ज़रूर। चलिए चलिए अगला गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ और वो ये है, ये धमाकेदार गीत।

हमारा फसाना मिट नहीं सकेगा ज़माना। और अभिजीत जी और अलका जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत जो हमने पेश की और फरफान हिंदुस्तानी रेडियो, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं? जी हाँ, और प्रोग्राम में हमने रखे हैं देखूं तो बाबुल सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल। चलो सुनते हैं। हाँ

वाह क्या गीत है, हम आपको सुनाएं शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। जैसे मैंने कहा, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो। फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम का। जी हाँ, अगर आपने प्रेम की है तो ढाई अक्षर प्रेम का आपको अवश्य मालूम होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है, ये फिल्म तो आपने अवश्य देखे, फिल्म डर। फिल्म डर तो आप देखे होंगे। लता जी और उदित नारायण मिल के आपको ये गीत सुनाते हैं शिव हरि के साज पर। तो आप शायद सोचोगे कि शिव हरि कौन है। शिव हरि वही जो संतूर वादक है, मशहूर संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, और हरि है हरि प्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाता है। इसलिए नाम लंबा था तो छोटा कर दिए शिव हरि के साज पर। और ये शिव हरि, यही दोनों ने फिल्म, क्या नाम है, दिमाग से निकल गया अभी था, अच्छा अभी हाँ, फिल्म सिलसिला में ये दोनों भी साज बजाए थे। चलिए उन्हीं की साज पर हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

तू मेरे सामने या लता जी और उदित नारायण मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये। जी हाँ, इस तरह से आ रहा है, क्या ख्याल है? मेरी कुमार सानू और अलका याग्निक फिल्म बाजीगर में।

फिल्म बाजीगर में से निकाले ये टाइटल सॉन्ग पेश किया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाए हैं। प्रेम प्यार की मोहब्बत की बातें, दूर जाने की बातें, बुलाने की बातें, बहुत सारी बातें हो चुकी प्रेम प्यार मोहब्बत में। लीजिए मैं कपड़ों की बात करूँगा तो आप सोच रहे होंगे अरे गंगा क्या हुआ तुम्हें बुखार लगा। जी नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ थोड़ा गला में खराश है लेकिन ठीक है। चलिए मैं कपड़ों की बातें कर रहा हूँ, अगर जो कपड़ों की बातें हुई तो क्या ख्याल है।

0: जी क्या बात है, सुनिधि चौहान, सुनिधि चौहान आपको भी सुनाए हैं। चाहो जाए दिल्ली चाहे आगरा, नहीं करना झगड़ा क्योंकि मिलेगा घाघरा, तो क्या ख्याल है। चलिए अगला गीत, अगला गीत हम चलाने वाले हैं, चलते हैं इस तरह से, सुनिए। ये भी एक धमाकेदार गीत है।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
2: नागिन से बल खा के,
1: हाय हाय हाय हाय हाय।

वह क्या बात है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। बिहार लूटने के बाद क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊँ?

0: Devi kamar betul ya kamar bantu habis salaman habis.
1: अच्छा तो ये वाक्य आपने सुने ना जब पड़ोसी के चूल्हे में आग ले ले, भैया शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम

वाह क्या बात है यारा। ओ यारा आपको सुनाया गया फोन के कार्यक्रम में, और गाने वाले थे अलका याग्निक जी और विनोद राठौर। चैनल पर आप चून हैं, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम आगे चला रहे हैं और आपको सुना रहे हैं ये गीत, इस तरह से आ रहा है।

कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, आप थोड़ी रेस्ट कर लिए होंगे यानी थोड़े आराम कर लिए होंगे, अगर आराम कर लिए हैं तो लीजिए, हम आपको फिर एक बार स्पोर्ट्स हॉल से दूर रखते हैं ना, इस तरह से सुनिए।

0: क्या चुने हुए गीत यहाँ से आपके लिए पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों। पसंद जो आपने की है, इस बार फिर एक सुंदर सा गजल हम देख रहे, कोई बात चले जगजीत और गुलजार के साज और संगीत में हम सुनेंगे। अगर आप अगर इन दिनों यहाँ होते तो चले मिलकर और श्रवण करें।
1: याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे

हर बात बस एक ही बात कहते थे। वो रोते हुए बात बस एक ही बात कहते थे, तुम पहले की तरह मुझे हंसकर दिखाओ ना। दर्द सबसे ज़्यादा तब होता है ना मेरे दोस्त, जब हम अपना दर्द

जहाँ पर आप अपना दर्द किसी से बांट सको, क्योंकि वो बहुत अच्छा है किसी से अपना दर्द, अपना दिल का बात कर सको। क्योंकि अगर आप दर्द परेशानियाँ में रहोगे ना, तो आपका शहद आपका खसौंधेद का हानिकारक होगा। तो कोई जो विश्वास लोग है ना आपके इर्द गिर्द में, तो जरूर से उनसे कॉन्टेक्ट

सुंदर सा इंस्ट्रूमेंटल। हाँ, ये भी कभी कभी सुनना चाहिए कि कितने सुंदर से और ये सब सजा दिया गया है। दिल टूटने का आवाज़ कोई नहीं सुनता ना, दिल टूटने की आवाज़ कोई नहीं सुनता, बस दर्द दिल में गूंजता रहता है। दिल में बसी थी तेरी तस्वीर, हाँ, दिल में बसी थी तेरी तस्वीर, मगर तूने मिटा दी हर तकदीर। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। एंड द मैथ्यू ओक ए फांस अस्ट्राइडर।

अब आगे में जाकर ऐसे कई पीढ़ियां आएगी और ये सब गजल सुनेंगे ना, ऐसे भी कई गीत हैं जिसमें खत लिखने वाला बात है कि फूल तुम्हें भेजा है। ये भी एक सुंदर सा गीत है जिसमें खत का इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है, गाया गया है। आगे में चल कैसे कई पीढ़ियां आएंगी तो सोचेंगे कैसा उन जमाने के लोग खत लिखते थे, क्योंकि ये आज के दौर पे तो सभी ज्यादा तौर पे डिजिटल हो चला है। आज थोड़ा गजल की मूड में हूँ और आप पसंद कर रहे हैं, आपका गुजारिश यहाँ से पेश हो रहा है। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं मेरे दोस्त, सुनिए जी, क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। आर्टिकुलेशन इज सेयर बलांगरेक एन खुद खस्प्रेक। कभी कभी लोग कम बोलते हैं और कोई जो कम बोलते हैं और सुनने वाला समझ जाते हैं, पर कम नहीं बोलना है जहां पर आपको समझ नहीं पाते। ज्यादा अल्फा से इस्तेमाल करो, मेयर वर्ड खबर एक खुद कम्युनिकेशन कान हेल फील बताएगा ना मैंने फ्रो मर ओक इन गसिन तुस फादर मुदर

अगर हम ये सोचे कि हर रोज जब ये सुबह नहीं आते, ये दिन नहीं आते, तो हम कैसे समझ पाते कि रात क्या होता है। सभी के जीवन में खुशियाँ लिखा हुआ है। हमारा बिछड़ना जरूरी था, हमारा बिछड़ना जरूरी।

खामोश रहकर अब हम सब समझते हैं मीठी बातों के पीछे मीठी बातों के पीछे के जहर को।

ललिता जी के आवाज़ में ये सुंदर सा गीत श्रवण की है कि वो शाम कुछ अजीब था और आज की शाम भी कुछ अजीब है। वो कहती है और क्या कहती है, कि जिंदगी वही है, बस वक्त है, बस वक्त है बदला। आशिकी नई है पर जख्म नहीं बदला। पास आकर भी वो हमसे दूर चले जाते हैं, पास आकर भी वो हमसे दूर चले जाते हैं। गम देकर हमें, गम देकर हमें तन्हा छोड़ जाते हैं। हिम्मत नहीं होती दिल के दर्द को दिखाने की, जो मरहम लगाते हैं वो ही जख्म खुदेर के चले जाते हैं। और ये गंभीर सा दो लाइन जरूर आप सुने कि दुआ करना दम भी उसी दिन निकले, कि दुआ करना दम भी उसी दिन निकले जिस दिन तेरे दिल से हम निकले। एक बार फिर ये बहुत गम

खुशी देने वाले, खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते। सुनिए एक गंभीर लाइन है, खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला अक्सर अपने ही होते हैं। जख्म ऐसा कि दिखाई भी नहीं दे किसी को, जख्म ऐसा कि दिखाई भी नहीं दे किसी को, दर्द ऐसा कि समझ आई सिर्फ खुद को। और ये सुनिए मेरे दोस्तों कि जिंदगी एक अजीब सी कहानी है, कि जिंदगी एक अजीब सी कहानी है जिसमें हर मोड़ पर परेशानी है। हम हंसते हैं बस दिखाने को, हम हंसते हैं बस दिखाने को, अंदर से तो बस वीरानी है। मैं कहती हूँ ये वीरानी जो है ये दूर हटाओ भगाओ, इसमें फूलों से सजाओ, इसे फूलों को फूलों से सजा दे।

आपको यहाँ से बहुत प्यार के साथ एक बार फिर हर बार कहूँगी स्वागत है, क्योंकि हर बार कहने में बहुत अच्छा लगता है और हर बार एक नया बार होता है, हर पल एक नया पल होता है। तो यहाँ से आपको फिर से एक बार स्वागत है, स्वागत है। और इसी के साथ चलते हैं सुनने के लिए, बड़े अच्छे लगते हो।

है यही कहीं अमित कुमार जी के आवास में। और कहते हैं, द बेस्ट मनीर ओम सेल्फ फर्ट्रोवंत विनन इस देंगन दून वार ये बांग फोर बेन। इट इस एन हेल ग्रोट उइताखिंग। आस यू दैट आन कुन, द बेंट यू गवोन अन गवेर्दिग पर्सोन। दा कुन्त यू, दा विल सेगे दैट यू ग्रेंसन हैब वरलेग। Dat is de beste manier om zelfvertrouwen te winnen, is dingen doen waar je bang voor bent. Succes!

0: साथियों के साथ कोरस के साथ अमित कुमार ने सुना दी कि ऊपर से देखो, नीचे से देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो, बस देखो ही देखो, देखते ही रहना है, कहाँ चलना है, कहाँ गुजरना है, कैसे मेरी नजरों से खुद को देखो मेरे यारों, मेरी नजरों से खुद को देखो, फिर मेरे प्यार का एहसास तो होगा, फिर शायद ही तेरी जिंदगी में मुझसे ज्यादा कोई खास होगा, फिर शायद ही तेरी जिंदगी में मुझसे ज्यादा कोई खास होगा। तू छोड़ देगी ये जमाना, तू छोड़ देगी ये जमाना, और तेरा हर एक पल मेरा साथ होगा। Geloof in jezelf, mijn lieve mensen, lieve luisteraars, geloof in jezelf, want jij bent sterker dan je denkt. Geloof in jezelf, jij bent sterker dan je denkt. Je hebt alles in je om te bereiken wat je wil bereiken. Omdat je goed genoeg bent. Je bent goed genoeg en je kan het.
1: O Sahin,

सचमुच डैडी डैडी अमित कुमार अपना पापा को बुला रहे किशोर कुमार जी की बाप बेटा का ये सुंदर सा गीत यहाँ से सुने हम। किसी से इतना भी ना जोड़ना, किसी से इतना भी ना जोड़ना मेरे दोस्त कि खुद की परछाई खो जाए। उसकी खुशी में जीते जी अपना सुकून ही सो जाए। किसी से इतना भी ना जोड़ना कि खुद की परछाई खो जाए, और उसकी खुशी में जीते जी अपना सुकून ही सो जाए। लोग मिलते हैं पल भर के लिए, लोग मिलते हैं पल भर के लिए, और यादें लंबी छोड़ जाता है। जो दिल के करीब होता है अक्सर, हाँ मेरे दोस्त, कि जो दिल के करीब होता है अक्सर वही

जहाँ से हम श्रवण कर रहे हैं भजन माला कार्यक्रम, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं अपना जीवन, अपना दिन जो है सफल बनाने के लिए। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दिस इज फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

राम नाम जो जोड़ ले वही जाता है। हम तो क्या कहे, ये शब्द ये गीत ये भजन निर्गुण भजन जो है चेतावनी वाला भजन जो है हमें याद दिलाता है किस काम के लिए हम इस धरती पे आए हैं, इस मृत्यु लोक में हम आए हैं। इसलिए फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ये हमको चेतावनी देते हैं, हमारे दिमाग को झकझोर देते हैं, जगा देते हैं, समझाते हैं कि हम किस लिए आए हैं इस मृत्यु लोक पर, हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम लाए हैं क्या और ले जाएंगे क्या। इस पर हम जरा गौर

जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। सुंदर हनुमान चालीसा आपके लिए प्रस्तुत किया गया है और कहते हैं कि परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। सभी को सुप्रभात। सुप्रभात, जिंदगी का हर पल, जिंदगी का हर पल खास है। जी हाँ, जिंदगी

बम बम भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। क्या बात है, यहाँ से आपको ये सुबह शुरुआत करने से ऊर्जा लेकर और शुरुआत करना है, मन की शांति प्राप्त करने के लिए पावरफुल ये जीवन जो है और ये दिन भी रहे। रिश्ते वही श्रेष्ठ है मेरे दोस्त, रिश्ते वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो। जी हाँ, आपने सुने हैं कि रिश्ते वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो, अहंकार कम और प्रेम ज्यादा हो। मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। बात भी सही है मेरे प्यारे प्रिय प्यारे भक्त प्राणियों कि मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। और ये भी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। सुनो एक बार फिर कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, पर बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा नहीं है। लोग भाग्य लेकर आते हैं, आप और मैं, हम सब भाग्य लेकर आते हैं और कर्म लेकर और जाते हैं। हम भाग्य लेकर आते हैं और कर्म जो हम करते हैं वो कर्म हम लेकर जाते हैं।

ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಸುಂದರ ಸಾ ಗಣೇಶ ಭಜನ್ ಯಹಾ ಸೆ ಶ್ರವಣ ಕೀಯೇ. ಪಾವರ್ಫುಲ್ ಪಾವರ್ಫುಲ್ ಭಜನ್ ಆಪ್ಕೆ ಲಿಯೆ, ತಾಕಿ ಆಪ್ಕಾ ದಿನ ವೋ ಅಚ್ಛೆ ಸೆ ಔರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಸೆ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಸೆ ಶುರುವಾತ್ ಹುವೆ. ये बात मैं आपसे बताना चाहती थी कि सुबह का हर एक पल, सुबह का हर एक पल का आशीर्वाद, हर एक पल हाँ भगवान का आशीर्वाद होता है. सुबह का हर एक पल भगवान का आशीर्वाद होता है. मेरे दोस्त, मेरे प्यारे सुनने वालों, हाँ भगवान का आशीर्वाद होता है. इसे हंसते हुए जिए, हाँ इसे हंसते हुए जिए और अपने दिन को शानदार बनाओ. क्योंकि मेरे दोस्तों, दिल थोड़ा से छू जाता है ये बात कहने के लिए कि ऐसे कितने हमारे जीवित प्राणी हैं जो सुबह को फरवेल कॉम नहीं कर पाते हैं. आप ये सुबह देखे हैं, आप बहुत खुशकिस्मत वाले हैं. या न्यू हुयो मोर्ख, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. बस हंसते हुए चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल से इसे स्वागत करो. और कहते हैं कि ईश्वर देता है उसी को जो बांटना जानता है. हाँ, ईश्वर देता है उसी को जो बांटना जानता है, फिर चाहे वो धन हो या खुशी.

भोलेनाथ भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ, हर हर हर हर हर हर महादेव। हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, सबके प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपकी, हे मेरे ईश्वर, कि आपकी कृपा, आपके कृपा से एक नई सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। हम सब कितने खुश नसीब है कि आपका आभार मेरे सभी सुनने वालों के सभी मित्र, सभी संबंधी खुशी रहे, स्वस्थ रहे, हम सब स्वस्थ रहे, हम सब खुशी रहे और उनकी दीर्घ आयु होवे। हम सब की दीर्घ आयु रहे, स्वस्थ रहे, संबंधी सभी जो है खुश रहे। ईश्वर आपकी, हाँ ईश्वर आपकी, हम सब की हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सभी दुख जो है वो दूर होवे। यही प्रार्थना है ईश्वर से, यही प्रार्थना है भगवान से कि हम सबको सुख शांति प्राप्त कराएं।

सुनाएं आपको लता और रफ़ी जी एक बार फिर, और वही मशहूर फिल्म मैं चुप रहूंगी से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और सुनने वालों, आप हो जो गीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से फाउन हिंदुस्तानी आपके लिए ये सुंदर सुंदर सा गीत जो सेलेक्ट करके रखी है

कितना रोमांटिक, कितना प्यार भरे ये सुंदर सा गीत जो आपने सुने। जी चाहता है कि बस सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, जी नहीं भरता ऐसे ही सदाबहार गीतों जो आपके लिए यहाँ से सिलेक्ट करके रखी गई है, आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम से तैयार करते। आप है संगीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से लेकर चलते हैं एक बार फिर ऐसे ही सुंदर गीत, और इस बार है मन्ना दे लता जी के साथ में।

सुनाए आपको मन्ना दे और साथ दे रही थी लता जी। बिल्कुल आपने सुने सही। आज ही जी लो, आज ही जी लो खुल कर यारो, आज ही जी लो खुल कर यारो, कौन जाने कल की क्या कहानी। हंसो मुस्कुराओ, हंसो मुस्कुराओ, फिर न होगी ये दिन सुहानी।

चंपा और सुन तारा, लता और किशोर जी ने सुनाए फिल्म का नाम है अपना देश। जी हाँ, जीवन की कहानी प्यार से लिखते चलो। जी हाँ सुनने वालों, जीवन की कहानी प्यार से लिखते चलो, मीठे बोल बोलते रहो, रिश्ते नए बनाते चलो। जीवन की कहानी को रंगीन बनाते सजाते और संवारते चलो। क्या लाए थे सुनने वालों, हम क्या लाए थे जो हम लेके जाएंगे।

जीवन के दो पहलू है। हाँ, जीवन है दो पहलू से बने हुए, जैसे रात और दिन, आज और कल। और कह रहा है कि मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा ही है।

कहते हैं कि जिंदगी में ना जाने कौन सा बात आखिरी होगी, जिंदगी में ना जाने कौन सा बात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते बातें करते रहो यारो एक दूसरे से, मिलते जुलते बात करते रहो एक दूसरे से, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी।

जाने ना। लता जी से आपने सुने फिल्म का नाम इंतकान। इंतकान सुनने वालों, हाँ इसमें हेलन भी अपना खूब कमाल की है।

0: खुशी एक एहसास है, खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। जी हाँ, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वो ही जीते हैं जिसको खुद पर खुद विश्वास है। द बेस्ट रेडियो स्टेशन इन टाउन, हाँ सुनने वालों, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो जनता के नाम। अजो दिन हाँ न्यूटन स्ट्रीट नंबर 25 पर है। दिन हाँ न्यूटन स्ट्रीट 25 पर जो इनका स्थान है, So viel Dingen kommen von selbst gut. Sorg dat je leeft. Denk er niet te veel na. Word niet ziek door jezelf te veroordelen. Verteer jezelf niet. De dingen die niet kunnen veranderen. Mensen niet kunnen veranderen. Je maakt jezelf kapot. Je dagen, je kansen, je leven, de mensen om je heen. Zoveel dingen komen vanzelf goed. Zorg dat je leeft.
1: Kom maar, ja.

मोनिका, ओ माय डार्लिंग, जिसका नाम मोनिका है तो ये गीत उनके लिए भी पेश किया गया है। साथ ही साथ जिसका नाम मोनिका भी नहीं है तो ये सुंदर सा गीत भी आपके लिए है जो यहाँ से नशर किया गया है। देखो तो फिल्म का नाम है कारवाने दिन एन सेफ तक, ये सदाबहार गीत जो आपके लिए पेश किया जाता है। शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द में एक नहीं हाथ नहीं, शब्द के नहीं हाथ नहीं पाऊं, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के ना तो हाथ है ना तो पाँव, एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। आप बातों से लोगों को जी जीत सकते हैं और बातों से ही लोगों को भी घायल कर सकते हैं। सभी है कि terwijl we dingen uitstellen, terwijl we dingen uitstellen, gaat het leven voorbij. तो कुछ नहीं अटकल करना सुनने वालों, अगर हो सके तो आज ही कर दो। जो कहते कि जो कल करना है तो आज करो, जो आज करना तो अभी कर डालो, क्योंकि कल का पता किसी को नहीं। और ये भी आपको भी एक शक्ति भी देगा अगर आप ये कहेंगे कि हम कहते हैं कि हाउ दिस सेन आल्टेट इन खदाख्तन, हाउ दिस सेन आल्टेट इन खदाख्तन, एंड दैट सेन एक विल है या एक विल है, एक कान है लुक्म। ये एक चाबी है, पॉजिटिव चाबी है आपके वास्ते। अगर आप कहीं ऐसे है जहाँ पर आप कुछ करना चाहते हो और लुक नहीं होते, तो आप ये जरूर से कहना कि एक वेल है, एक कान है लुक नहीं। और इसके साथ सुनने वालों, हम आपको लेकर चलते हैं फिल्म शोले की तरफ।

महबूबा महबूबा सुनाई आपको, हम आपसे बता दें आर डे बर्मन, जी हाँ आर डे बर्मन ये गीत को गाए हैं और म्यूजिक भी डायरेक्ट तक की है आर डे बर्मन, जी हाँ सुनने वालों। और जैसे कहा कि फिल्म का नाम है शोले, शोले नहीं खाती फैफन से फंत, वही मशहूर वही है तक फिल्म

शादीशुदा घर अनहुलक इस आस अनहाउस। हाँ, ऐसे फर्क लगाए कर सकते हो कि अनहुलक इस आस अनहाउस, तो आप इसका मतलब हम आपको बताएंगे। अस अन लम्प है नित मेर दूध, आपके घर में जो आप एक एक चिराग जो काम नहीं करते हैं, जो नहीं जलते, अस अन लम्प है नित मेर दूध खाए नित अब सुख नार अन न्यू हाउस मार ये रिपेयर द लम्प। एक दो चार शब्द है मार इसमें कितना गहराई है। अनहुलक इस आस अन हाउस आस अन लम्प आस अन लम्प है नित मेर दूध खाए नित अब सुख नार अन न्यू हाउस मार ये रिपेयर द लम्प। संतोष मन, संतोष मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। संतोष मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। आप सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

आकाशवाणी के प्यारे प्यारे सुनने वालों, आकाशवाणी के प्यारे प्यारे सुनने वालों, भाई बहनों, दोस्तों, आप सब कैसे हो? आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा। मैं हूँ आपकी सेविका शांता जी। स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राम राम, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार हो जी। आप सब कैसे हो? जो आज कोई भी शुभ कार्य को करने को जा रही हो या तैयारियां करती होगी, आप सभी को बहुत बहुत से शुभकामनाएं पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। हम उन्हें भी याद करते हैं जो दुखित परिवार है, बीमार है, लाचार है। यही विनती है, प्रार्थना है प्रभु परमात्मा से कि उन सभी को सहन शक्ति मिले।

मोनिका, ओ माय डार्लिंग, फिल्म कारवां से निकाला गया। सुनने वालों, आप ही के लिए सब सेलेक्सी करके लाई हूँ, जरूर से आप सुने और पसंद करें।

0: रहे हो?
1: शादी नहीं की, प्यार भी नहीं?
0: इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया।

रेकरल ले कि दिन है यही फिल्म तलाश। फिल्म तलाश से ये हमने सुने जी मेरे प्यारे प्यारे सुने वालों। हर पल का आनंद ले, हर पल का आनंद ले मेरे प्यारे प्यारे सुने वालों। खुशियाँ कभी इंतजार नहीं करती। और तेरे मेरे बीच कुछ आखिरी नहीं, तेरे मेरे बीच कुछ आखिरी नहीं सिवाय आखिरी सांस के।

क्या साज और क्या संगीत सजाए हुए है। सुनने वालों, ये सब आप ही के लिए पेश किया जाता है आप ही का फोन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से आप सभी के लिए। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए, अगर अच्छे समय की राह देखोगे ना तो मेरे प्यारे सुनने वालों, तो जीवन कम पर जाएगी। ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको, जी हाँ, ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको। दुनिया वालों को पसंद तो पल भर में बदल जाती है। मोहम्मद रफी जी के आवाज में हम सुनेंगे कि तू ही मेरी लक्ष्मी, और आगे आप सुनते रहना।

इस गीत में तो जॉनी लीवर अपना कमाल दिखाए फिल्म का नाम दुनिया सुनने वालों। जी हाँ, दुनिया से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है और ये दुनिया फिल्म जो है ये पिक्चराइज किया गया है नेहा तीन सेशन से फंतख नहीं हमने गलत कही नेहा तीन अख्तन सेस्तख में ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है। वो नहीं जानते कि मेरे लिए क्या है वो नहीं जानता कि मेरे लिए क्या है वो, मेरी ज़िंदगी का आधार और मेरी सांसों का तार है वो। जी हाँ, मेरे ज़िंदगी का आधार और मेरी सांसों का तार है वो। कितना भी लड़ ले झगड़ ले पर मेरे लिए बस प्यार है वो। नफरतों के बाज़ार में प्रेम की सुगंध फैलाओ, आओ सब मिलकर दुनिया को हंसते हंसते हुए गुलशन बनाए।

night in London. जिसने अदा सीख ली है गम में मुस्कुराने की, जिसने अदा सीख ली है गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी, उसे क्या मिटाएगी साजिशें ज़माने की।

फिल्म शारदा से निकाला गया सुनने वाला ये सुंदर सा गीत है ना, सुंदर सा गीत जो आपके लिए चलाया जाता है, चुन चुन कर आपके लिए यहाँ से निकालती हूँ और आपके लिए पेश करती हूँ। कमाल की है ना, कमाल की है ना, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती है, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती है, दिल कागज नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। उजाले की कदर उनको होती है जिसने जिंदगी में अंधेरा देखा हो।

शब्द जो है ये रेगे हिंदी म्यूजिक आपके लिए जो पेश हो रहा है मेरे प्यारे सुनने वालों, और आपसे ये बता दे इस रेडियो स्टेशन जो ऐसा ही न्यू स्टाइल गीत आपके लिए ला रहे हैं। इस द इर्स्ट एंड बेस्ट रेडियो स्टेशन सिर्फ आपके लिए, आपके लिए नए से नए गीत आपके लिए चुनकर खोजकर और ला रहे हैं सुनाने के लिए। और ये रेगिस्तान में आप ये शब्द जो है उसे सुने और एक एक शब्द हमारे जीवन के कुछ लाइन इसमें जरूर आप पकड़ पाएंगे। हाँ, सोचेंगे हाँ ये तो बात सही है। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए यहाँ से चलते सुनने के लिए फिर ये रेगिस्तान में और शब्दों में क्या हमको सुना रहे।

अवश्य अवश्य सुकून बाजार में नहीं मिलती मेरे दोस्त नाना। और कहते हैं इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत मेंसलक है, इस द ग्रोटेस्ट रैक्टम। इंसानियत के बिना ये दुनिया जीने लायक नहीं रह जाएगी। आपने ठीक सुना कि इंसानियत के बिना ये दुनिया जीने के लायक नहीं रह जाएगी। इंसानियत ही इंसान की असली पहचान है ना।

हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, की दुनिया में रहना है तो अवश्य काम करो मेरे दोस्तों। काम के बिना यहाँ रोटी भी नहीं मिलती है। फिल्म हाथी मेरा साथी किशोर दा जी की आवाज में श्रवण की।

जी, चलते चलते क्या यही प्यार है। और कहते हैं कि इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, हकीकत में उसे लिबास में नहीं बल्कि इंसान में तलाश करो।

जीवन खुशहाल में बिताएगा, है ना। हाँ, ये कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार। ठीक सुना आपने कि गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार। इससे क्या होगा मेरे दोस्त अगर बदले नहीं विचार। हाँ, कि गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इससे क्या होगा मेरे दोस्त अगर बदले ना

लेटेस्ट लेटेस्ट द न्यू रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए पेश किया गया है द एन एक्ट फाहन हिंदुस्तानी रेडियो से।

हिमेश रेशम मिया की आवाज में श्रवण की है और कहते हैं, और क्या कहते हैं, रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे, कि रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे, नजरों से नहीं दिल से बस बात करे, हर पल में प्यार है। जी हाँ, हर पल में प्यार है मेरे दोस्तों, हर लम्हे में खुशी है, हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, कह दो तो यादें हैं, कह दो तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी है मेरे दोस्त।

ऐसा ही पहचान बन गया है रेगी स्टाइल में। आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है आपका फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जब हम अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और आप मैं भी अपने सपने अपने लक्ष्य के पाछे जरूर से दौड़ रहे हैं। हम जरूर से कामयाब होंगे कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लो मेरे दोस्त। हाँ कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लो, यही आदत तुम्हें हर दिन खुश रखेगा। गिर कर भी जो उठ जाए वही सिकंदर।

हाँ, गिरकर भी जो उठ जाए तो समझना आप सफलता को जरूर से छू लेंगे। मुस्कुराओ तो सही, मुस्कुराओ तो सही, बेवजह कभी क्या पता ये भी आदत बन जाए। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे दोस्त कि तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुस्कुरा के देखो तो सारा जहां रंगीन है, मुस्कुरा कर तो देखो, हाँ वही मुस्कुरा कर तो देखो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला दिख।

दिल से कहता है और क्या कहता है, चले हम यहाँ से श्रवण करें उससे बात। उससे पहले ये आपसे बता दे कि जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। हाँ, जिसमें जीने की चाहत बस होनी चाहिए। गम जो है ना खुद ही खुशी में बदल जाएगी, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए बस। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है।

शब्दों पे आप जो गौर करें मेरे दोस्तों, तो अलहिदा है और बहुत इसमें हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरी वो खुशी हो मेरे दोस्त कि तुम मेरी वो खुशी हो जिसके बिना मुझे मेरी सारी खुशी अधूरी लगती है। तो आप सोचो आप कितना खुशनसीब हैं और मैं भी कितना खुशनसीब हूँ आप जैसा दोस्त है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है मेरे दोस्त कि जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है। दर्द में अकेले है दर्द में अकेले थे अकेले है और खुशी में जमाना है। लगे हाथ ये बता दे हूँ यह सेल्फ फॉरसेकन कंसर्न हूँ यू सेल्फ फॉरसेकन कंसर्न एंड दैट इज आल्सो नंबर 1 सेट योर सेल्फ अप नंबर 1 वंट यू बेन बलांगरेक। सुक नीत नार गुडकेयरिंग ऑफ बेफेस्टिगिंग फन अंदरन गिव योर सेल्फ आंदाग इन प्लास वन आंदाग टू सुकन बाय अंदरन। Stop met jezelf te bewijzen. Wees niet bang om nieuwe dingen te proberen. Omarm verandering. Respecteer jezelf. Durf nee te zeggen. Vertel altijd de waarheid. Durf je kwetsbaar op te stellen. Denk positief. Loop weg als je slecht behandeld wordt. Zorg goed voor jezelf, mijn lieve mensen. Zorg goed voor jezelf. Ben trots op jezelf. Vier je successen. Jij bent genoeg, precies zoals je bent. Geloof in jezelf, elke dag opnieuw. En dit zijn een paar tools hoe je zelfverzekerd

यही कहती हूँ कि हर दिन अपने आप को जीतो जीतो। चार दिन की है जिंदगी, किसी चार दिन की है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा। कर भला होगा भला, कंठ में ये बांध ले। होठों पे हंसी हो तो जिंदगी हंसी लगती है, होठों पे हंसी हो तो जिंदगी हसीन लगती है, खुशी के लम्हों से हर कमी दूर लगती है। इस पल के लिए, ये घंटे के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ साथ देने के लिए।

तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। ये शानदार गीत फिल्म मनोकामना में से निकाले हैं और बप्पी लहरी के साज पर बप्पी लहरी खुद ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ आपको अवश्य अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ।

तुम चैन हो, करार हो, मेरे इश्क हो, मेरे प्यार हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है, म्यूज़िक डायरेक्टर ने इस गीत में यही सोचा होगा कि इसमें ना ड्रम बजाऊँ, ना तबला बजाऊँ, ना ढोल बजाऊँ, बस वायलिन और गिटार से काम चला लिया है। फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा यह गीत हम भी आपको सुनाए हैं। वैसे तो कितने गाने में ड्रम और तबला कम बजे हैं, बिल्कुल नहीं बजे रफ़ी साहब के गाने में भी, लेकिन इस गाने में भी जहाँ तक मेरा ख्याल है, उन्होंने उन लोगों ने फैसला की चलो अब की बार कुछ नहीं बजाते हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

www.fawnfm.nl पर आप चून हैं, जो लोग चून किए मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम पे आप चून हैं, एक शुभ समय पेश करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।

1981 का ये गीत, जी हाँ, फिल्म दर्द में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। अगर प्यार ही मोहब्बत की बात चल ही रहा है, जी हाँ, तो चलिए नए पुराने गीतों के संगम में हम आपको ये सुनाते हैं। के आपको सुना रहा, यानी किशन कुमार।

ये ख्वाहिश तो हमेशा रहता है ना प्यार करने वालों का कि तू किसी और को चाहे, ये खुदा ना करे। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और क्या ख्याल है बाबुल सुप्रियो, और देखते हैं। हाँ, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक।

प्यार करके देखो ना, ये गीत सुनाया गया फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत हम आपको क्या सुनाएं, चलो ये सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

नए गीत पुराने गीतों की मेल में एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी, ये दोनों मिल के आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की आपकी ही आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको सुनाऊं आशा जी और कुमार सानू? जी हाँ, आशा जी कुमार सानू आपको क्या सुना रहे हैं?

क्या बात है, बाबुल सुप्रियो और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं सबसे प्यारा है, वाह क्या बात है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये बहुत प्यारा नंबर ये भी है एक।

तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आई, प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें जबकि हो रहा है, हमने ये गीत पेश किए फ़ान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए एक बार फिर हम आपको सुनाते राहत फ़तेह अली खान।

0: 2022 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

रोशन के साथ पर रवि साहब और लता जी मिल के आपको ये गीत सुनाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। तो अगर जो आपका हृदय से स्वागत है तो लीजिए आपको ये गीत से हम आप स्वागत करते हैं इस तरह से लता जी।

पिया बोले होले होले। आपने तीन आवाज़ सुने, सैफ अली खान की, सोनू निगम और लता जी की। ये तीनों मिलके आपको सुनाए हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए। ओपी नैयर के साथ पर कश्मीर की कली रफी साहब।

किसी न किसी से कहीं ना कहीं कभी ना कभी ओपन एयर के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये शानदार गीत फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

महेंद्र कपूर जी, ये शानदार दिवस में आपको सुनाएं लता जी के साथ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आकाश पे दो तारे सदियों से चमकते हैं। चलिए, ये गीत के बाद हम आपको सुना रहे हैं, ये गीत इस तरह से आ रहा है।

ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत फिल्म दिल ने फिर याद किया 1900 देखूँ तो नहीं 1966 का ये गीत, और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: That woman, Elena.
0: Are
2: you? तुझसे नाराज जिंदगी अनूप घोषाल आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

अगर दिल किसी से लगाया ना होता, रवि साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए चित्रगुप्त के साज पर नेखंतीन एन शस्त का ये फिल्म है। और हमने पेश की फिल्म बड़ा आदमी से निकाल कर। चलो देखते हैं अगला गीत क्या ख्याल है, अगर जो मैं आपको सुनाऊं, सोनू निगम, साजिद और सुनिधि चौहान, ये तीनों मिलकर क्या कमाल करते हैं।

फिल्म लव स्टोरी में से निकाले, हमने ये गीत और पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आपको एक शुभ, सभी शुभ हम पेश किया जा रहा है। चलो हमको सुनाते हैं ये गीत इस तरह से।

न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएगी। ये शानदार गीत चला हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। इस गीत के पीछे एक राज है, एक कहानी है, लेकिन कभी फिर बता देंगे, इसे हम याद रखेंगे, शायद आप भूल जाएं, लेकिन कभी भी अगर ये गीत मैं चलाऊंगा तो इसकी कहानी आपको अवश्य बता दूंगा। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है हम आपको ये गीत सुनाते हैं।

0: ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, एक बार फिर देखते हैं लता जी है।

वाह शाबाश, क्या बात है लता जी की आवाज़ में हम पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में शकील बदायूं की लिखी हुई गीत लता जी की आवाज़ में फिल्म आदमी में से निकालकर नौशाद अली के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, ये भी एक लता जी का गीत है और साथ दे रही लता जी और मुकेश, मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल रहे हैं, ये प्यारा गीत सुन लीजिएगा मुकेश जी और लता जी।

ये किसने गीत छेड़ा और किसने किसकी जुल्फ बिखरी। जी हाँ, लता जी और मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल कर हमने पेश किए। चलिए, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, बहुत आप पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

फिल्म सुर में से निकाल कर महालक्ष्मी ने आपको सुनाई। द्रमर तो पीट पाट कर द्रम रख दिया। बहरहाल फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका स्वागत है। फिल्म सुर में से निकाले जैसे मैंने कहा और हमने पेश की। चलिए अगला गीत। ठहर जाओ अगर आपको कहीं जाना है थोड़ी देर रुक जाओ, हाँ थोड़ी देर रुक जाना।

थोड़ा सा ठहरो, लता जी आपको सुनाएं ये शानदार गीत फिल्म विक्टोरिया तुनोद्री में से निकाल कर हमने पेश किया है ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी आर डी बर्मन के साज पर। फिल्म तो आपने अवश्य देखे होंगे, फिल्म सीता और गीता निगतिन तुंजी मित 1972 का ये गीत है, 72 का ये फिल्म है और रमेश सिप्पी और जी पी सिप्पी बनाने वाले इस फिल्म का। रमेश सिप्पी, जी पी सिप्पी, ये दोनों सिप्पी जो है ये दोनों फिल्म शोले के बनाने वाले हैं और साथ मिलकर क्या नाम है सलमान खान का पिता का, सलीम खान, सलीम खान और जी पी सिप्पी ने मिल के ये फिल्म बनाए हैं, फिल्म सीता और गीता। हम इसे निकाल कर ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

अच्छा जी, ओ किशोर कुमार जी, फिल्म सीता गीता में से निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, ये गीत रफ़ी साहब का ये गीत है, बहुत पुराना गीत है, नेगेटिव फिर का। ये गीत को लेकर कितने बैठक गाना में भी गाए हैं, लेकिन ये बैठक गाना निकाले कहाँ से? फिल्म फिल्म जी हाँ, फिल्म सजनी से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है नहीं सजना, सजना से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात। रवि साहब आपको सुना रहे हैं निकिति फिर का ये गीत, सुन लीजिएगा।

0: दिखली।
1: रफी साहब की आवाज में आपको सुनाया गया है ये गीत, जब से दिखली सूरतिया तुहार गोरिया। जैसे मैंने कहा नहीं कि थी, फिर से असख का गीत है, फिल्म है सजना से भैले मिलनवा, उसी फिल्म में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। तो क्या ख्याल है अगर हम ये चलाएं आपके लिए कि लोग तो कहते हैं लेकिन पता नहीं निर्णय आपका क्या है, दिल उसे ही देना चाहिए जो आपके लिए जान दे, पता नहीं सुनते हैं।

उदित नारायण जी आपको सुनाए चांद की चांदनी, गुलाबों की कली, मेरे लिए तुझे रब ने बनाया है। हमने बहुत कोशिश की ढूंढने के लिए कौन सा फिल्म का या नॉन फिल्म का होगा, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो, अगर मुझसे बता देते तो बहुत अच्छा होता। हमने बहुत ढूंढे, नहीं मिला, और शायद सुनने वालों श्रोताओं को भी अच्छा लगे। ये फिल्म का नाम, कौन सी फिल्म का ये गीत है, चलिए गीत हम आपको सुनाते हैं। चलिए जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत है।

रफी साहब आपको सुनाए शमा जले या न जले। www.pinfaun.fm.nl पर आप चून है जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए चलिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत इस तरह से।

दीवाने को प्यार से देखो, प्यार से पूछो। रफ़ी साहब ने तो छेड़ दी। जी हाँ, प्रेमिका को छेड़ दी तो क्या मुकेश जी ये कह रहा है, अगर आपने प्रेमिका को छेड़ दी तो चलो उनकी तारीफ कर देते हैं हम। दर्पण को जे देखा, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियन।

दर्पण को देखा जब तूने किया सिंगार, बार बार किया सिंगार। मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत। इस तरह से फिल्म उपासना में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Fahom Hindustani Radio.
2: चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, आओ इस तरह से लीजिए।

0: में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम
1: ये वाकई आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने हैं। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

खान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे, ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकालकर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है, तो लीजिए आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब, आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें एक प्यार कर दे है करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और हम पेश कर रहे हैं इस तरह से रवि साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफ़ी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और मैं तू मुकेश द हार्टथ्रॉब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, लेकिन तीन शस्त्र 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं। जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का। जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से। जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। एवरग्रीन किशोर कुमार।

0: toe haar nobe is en lekker charm kopant met je te. Op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiovanhoornfm.nl of mail ons op info@vanhoornfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
0: Agar ish karo to adabe bhi wafai bhi sikho. अगर इष्ट करो तो अदाबे अदाबे भी वफाए भी सीखो ये चांद दिन कर बेकरारी मोहब्बत नहीं होती जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए तो हम तुरंत चलते हैं एक गाना की ओर दोस्तों और वो क्या होता आप खुद ही सुनिए

मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा काम का चीज़ है और कभी कभी मोहब्बत में बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती है दोस्तों। और गलतियाँ तो हमारे लोग का भी एक हिस्सा है हमारे दोस्तों। तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ, जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी बेमिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों। मुझे नींद न आए, आपको आते हैं? आपको क्या आते हैं? अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को चलाएंगे और सुनाएंगे, और कुछ शायरी एक दो बीच बीच में हम कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं, और ये दर्द की बात है। और दर्द में क्या होता है दोस्तों, दर्द में आंस गिर जाता है, दिल रोई पड़ता है, दिल धड़क जाता है। और जब दिल धड़क जाता है तो क्या होता है, आप खुद ही सुनिए।

और न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं, आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज ही थे, जब तू मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेरे आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल

लगता है। यस मैन सिटोकिर, फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल के बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं। सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

हम चाहते हैं सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों कि कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेगी, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेगी, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेंगे। प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारी दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए। और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं, प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोक लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

मेरे जिंदगी में, और मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो। और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है, और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों। मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है, आप तो जानते हैं जब लोग कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है, जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है, और बैठ के और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है, और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों, और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हुए के भैया ये हंसते हुए, सिर्फ प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए, नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, नजरे करम मुझे पर इतना न कर, मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इसके जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल बेस्टमैन से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो, उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कतरीना कैफ के और इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

गुरु दोस्तों टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपके तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है, उससे बचना।

और ओ मेरे दिल की चैन सहनाई मेरे दिल को और छुपाती चाहिए परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है। हम चलते हैं अगला गीत की ओर जो है दीजिए रेमिक्स ओल्ड इन सॉन्ग 1964 एंड 1990 और हिंदी सॉन्ग फन।

0: इसी बात थी दब आके चली जाई तो हम जाते ये पर्दा हटाओ ना
1: जरा मुखड़ा।

और ये पर्दा हटा दो, और ये पर्दा हटाएंगे तो क्या क्या दिखाएंगे। तो चलते हैं बॉलीवुड तख्त सॉन्ग के ओर, और रिमिक्स हिंदी ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम यहाँ से और आपको और आगे सुनाते हैं। ये मुख वाले में क्या स्विंग स्विंग स्विंग।

और जिंदगी एक सफर है और वो है सुहाना, और चाहे कल क्या होगा वो तो देखेगा जमाना। और हम दोस्तों और हम चलते हैं अगला और रीमिक्स सॉन्ग, ओल्ड इज गोल्ड मेरा दिल ये हमारा दिल तो सदा पुकारते हैं। लातवे फ्रांस स्विंग है।

सारा जवाना और सारा जवाने के बाद तो हम चलते हैं और बिंदिया चमकी है, बिंदिया कब चमते है, चमा चम चम।

और बिनिया तो जरूर चमकेगी, और ऐसे तैसे थोड़े चमकते भैया, तो हम चलते हैं एक और गीत की ओर।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimumsummerfestival.nl.
1: तो एंड यानिकी हम चलते हैं बैठक गाना सुजल उमराव भैया उसके ओर हम चलते हैं और वो क्या सुनाते हैं आओ सुना जाए।

और क्यों खफा है तू हमसे, लगा है तुमसे एन बैठकाना जोंग दान किन वो दित नोइट नोइट फॉर बैल लात खान फान शिरली गया ले।

वांजु कौंच मांगे भैया को दीना मांगे द बैठक गाना टाइगर धरविंदर सिंह जीवनाथ के बाद तो हम चलते हैं और अपना भुजनिया सॉन्ग भुजनिया के पतोहिया ना बात करे हैं और वो है प्रदीप गोपी का गाया हुआ ये सॉन्ग आओ मिलकर सुना जाए एंड अमेजिंग स्विंगर स्विंगर

और दोस्तों कोठड़िया की और इस गीत को गाया है राजेश शिवनंदन के बाद हम जाते हैं एक बार फिर और वो है सुजल उमराव की ओर।

लेक आओ और बधौआ लेकर आओ। और ये बधौआ कौन लेकर आते हैं? वो आते हैं प्रदीप गोपी, आपको सुनाए हैं। तो दोस्तों,

हम हैं जॉनी नंबर वन, और जॉनी नंबर वन जो है तो वो जरूर कुछ शायर के गीत आप लोग को सुनाएंगे। तो आओ सुना जाए, मैं शायर नहीं तो और क्या हूँ। फिल्म के नाम है बॉबी का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं भी शायर नहीं हूं, लेकिन हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों। और जब रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की, अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

तेरी भी दोस्ती पसंद आए हमारे दोस्तों। तो बात क्या है, कैसे है, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं और प्यार के मूड में आए हैं, तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर। ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए। और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

बाबुल सुप्रीमनियन के बाद तो हम चलते हैं और एक गीत के ओर, वो भी आज प्यार के मूड में है, कुमार शानू के ये गीत है, आओ प्यार करे, आप भी प्यार करो ना।

0: और चांद से पर्दा कीजिए कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे ये। तो एक और हो जाए बाला सुपरमनियम का ओल्ड सॉन्ग
1: बहुत प्यार
0: और मैं भी तुमको बहुत प्यार करते हैं हम
1: बहुत

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे जब लेख सांसों में दम रहेगा। दोस्तों तो हम अगला गीत की ओर जाते हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत तो नहीं है। अलका याग्निक सोनू निगम का ये सॉन्ग है।

और कहते हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और इसलिए कि तुम मेरी बाहों में हो तो आप कितनी महान हैं कि सांस लेने की भी हमें फुर्सत नहीं है क्योंकि तुम मेरी यादों में नहीं मेरी बाहों में हो। दोस्तों हम चलते हैं नाइटिंगेल और लता मंगेशकर और परमा श्री मोहम्मद रफी के एक मस्त भरी प्यार भरी गीत अतिश वेलन हीला वाली फन 1957 और फिल्म के नाम बा भाभी और ये गीत हम चलाते हैं आप लोग सुनो।

छुपा कर मेरी आंखों को, तो पूछे कौन है और बता दीजिए नाना जी लता जी और प्रमा श्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। और हम चलते हैं कभी कभी जब प्यार हो जाता है तो लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं, लोग खोजते हैं कि हम कहाँ अपना प्यार को ढूंढू और प्यार में लोग क्या क्या देखते हैं। और ये गीत है, रब को भी लोग देख देते हैं प्यार में हमारे।

और दोस्तों हम चलते हैं एक ओल्ड इन गोल का पुराना गीत है, वो है फिल्म का नाम है मेरे ख्याल से ये है, ये कुछ और फिल्म का नाम है, तुम अकेले तो कभी बाग में मत जाया कर आओ प्यार करे, मूवी का नाम है आओ प्यार करे, ये रजत खन्ना का ये एक फिल्म है और ये गीत आओ सुना जाए मिलकर।

और तू अकेले कभी भाग में जया ना करो दोस्तों, तो बड़ी या लूट से भैया क्या क्या होता है, भैया क्या क्या होता है।

और जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्या आपको मालूम है? आपको पता है कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं हमारे यारों? तो जरूर हमसे आप बता देना। हम चलते हैं अलका की ओर, अलका याग्निक की ओर, और फिल्म का नाम है खल नायक। इस निशोन ओ फिल्म मार इट इज हेल मोई नंबर लात वेव दी ओके gaan draaien voor de mensen die namelijk niet alleen oude nummers, maar ook nieuwe nummers horen. Het is niet helemaal nieuw, maar toch wel.

पालकी में होके सवार चली रही। फिल्म के नाम है खलनायक। खलनायक के बाद हम जाते हैं, क्या आपको भी प्यार हो चुका है और अपने प्यारी को कहते हैं कि आज नहीं कल नहीं लेकिन 100 साल पहले भी हमें तुझसे मोहब्बत थे। नाइटिंगेल लता जी, आशा परेख देवानंद का ये फिल्म है। सॉन्ग है पद्मा श्री मोहम्मद रफी और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। बहुत लोग इस गीत को पसंद करते हैं, मुझे यही उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा लगेगी। कारण कि ये गीत सुनते सुनते सुनते सुनते लेकिन दिल कभी भरता ही नहीं है। आओ सुना जाए।

सौ साल पहले तो मुझे प्यार था, मालूम नहीं है कि सौ साल पहले हम क्या थे दोस्तों, वो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक गीत आपको हम सुनाते हैं और वो है कभी कभी दिल से लग जा गले। नैतिकी लता जी फिल्म के नाम है, मूवी का नाम है वो कौन थी। वो कौन थी निकट होंडेड एंड फिनेस का। इस फिल्म में काम किया है मनोज कुमार, साधना, हेलन, प्रेम चोपड़ा। आओ चला जाए लग जा गले में। क्या है

फिरिए मुलाकात हो ना हो, नाइटिंगेल लता जी फिल्म का नाम, वो कौन थी। और ये गीत जो है दोस्तों, हम चलते हैं हुस्न वाले, तेरा जवाब नहीं है, किसी से जब प्यार करते हैं तो उसका जवाब तो कभी हो ना हो, हो ना सके। परमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, मूवी का नाम है घराना 1961।

हुस्ने वाले तेरा जवाब नहीं है, और हुस्ने वाले तेरा जवाब के बाद हम जाते हैं, और वो भी एक ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग आज के मूड में है, वो है और ये है, फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है, आपकी परिछाइयां। निखतिनहोंदत एन फीनस अस्तखमेंजे, मैं निगाहें तेरी चेहरे से, परमाश्री मोहम्मद रफी। एक रोमांटिक सॉन्ग है जिस फिल्म में धर्मेंद्र काम किया है, आओ सुना जाए ये क्या है भाई, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा गीत होगा।

और दोस्तों और मैं निगाहे तेरी चेहरे से फरमान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है। उसके बाद हम चलते हैं एक सुपर हिट ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग है और वो है माइती मुकेश नाइटिंगेल लता जी का एक फिल्म है। आपको ये गीत जरूर सुनना चाहिए

0: शाबाश शाबाश शाबाश विशाल खेमाई के नया नया ये ताजा ताजा गीत यहाँ से हमने सुनी कि दोनों बहनियां के साथ हम सुनेंगे म्याऊं म्याऊं।
1: अरे तनी बिल्ली के कहानी सुन ले रे, बड़ा लेसी बिलारवा।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेवन फेटा फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो तुम।

करते तो दोस्तों आप जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम आज फिर हमारा शुरुआत है। कुछ नई नई, कुछ पुरानी पुरानी और कुछ मीठी मीठी, स्वीटी स्वीटी, और यानी कि शेर और गाना भी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों। कि कहते हैं कि मोहब्बत किशोर, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एहसास होना चाहिए, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एक एहसास होना चाहिए, और हमें जिनसे प्यार है बस उन्हें पता होना चाहिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, आज कुछ कॉमेडियन यानी कि कुछ चुटकली शेर भी आप लोग को हम आज बताते रहेंगे। कि छोटे छोटी सपने हैं मेरी, अरे छोटी छोटी सपने हैं मेरा, छोटी सी है आशा, पूरी दुनिया पर हुकूमत हो मेरी, बस इतनी है अभिलाषा हमारे दोस्तों। तो हम चाहते हैं बारिश बन जाना, बारिश बन जाना, एक गीत की ओर आओ मिलकर बस।

दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। कि दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहोन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबरो 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे, आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 MHz और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं, हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में, पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और वो है www.fahon.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत्वास वाला मोह ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना, तुझे अपना बनाना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा, हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता, चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका, अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: और कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गया हुआ गीत है, छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों, कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है, कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम, कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों, कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है। और खास करके विंटर के महीना में, कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों, उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए,
1: मर जाने तो मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा, सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना,
2: ट्रेन 6 घंटे में।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिम नौ यानी कि जुबिन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी दोस्तों। जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपके शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल है तो दोस्तों बहुत लंबा होता है कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव मैं प्रेम की दीवाना हूँ एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

Oh, Sanjana, I love you. Sanjana, I love you. हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और एस चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है। और सिद्धरात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, निहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों, और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है, और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे, और कहते हैं मिलना इफ्तिताह था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था हमारे प्यारे दोस्तों। मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था, वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था। हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जब उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए, कि कहते हैं उम्र की राह में जयबाद बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूं काम करके रिकॉर्ड तोड़ दूं मैं, कमबख्त पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया, जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल के ओर, शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे, फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहां कहां ना लागे दोस्तों। फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका दोस्तों। और प्यार भरी प्रोग्राम यहां से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0 7 3 6 5 20 20 4 7। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूमर 25 देन हाँ शहर से। इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई, कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है दोस्तों। कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है, कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे झियक गई तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो दोस्तों, दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो करते रहो और करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमारे, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है, और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रवल का न्यू सॉन्ग है फ्रॉम दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद करती थी, पहले सिर्फ उसे याद करती थी और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारों रेडियो फोन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौडवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे, माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जानते हैं वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग।

कुंभ हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और अब तेरे दिल में, अब तेरे दिल में हम फिल्म के नाम है आरजू अकयाग्नी कुमार शानू और इस गीत फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित। दोस्तों जिंदगी के कुछ लम्हे, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है। यूं तो वो दूर होते हैं नजरों से, पर उनके एहसास दिल के पास होते हैं। कुछ लवली प्यार भरी सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और परमाश्री मोहम्मद रफी का गीत है और नाइटिंगेल लता जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। आओ मिलकर सुना जाए।

और चला भी आ जा रसिया मान के आंखी फिल्म का नाम है हमारे दोस्तों। कहते हैं यू आप सॉरी कहकर हमें शर्मिंदा न किया करो, यू आप सॉरी कहकर हमें शर्मिंदा ना किया करो, हम तो बस आपकी है हमें यू गैर ना करा करो। तो कुछ शायर व शरी हो जाए हमारे सुनने वालों की, जन्नत में रहने वाली परी हो तुम, जन्नत में रहने वाली परी हो तुम, मेरी जान मेरी जिंदगी हो तुम, यारो मैं बैठ कर यू सोना चाहता है, मेरे जान वो कहीं नहीं होता है। तो कुछ प्यार भरी गीत आप लोग को हम सुनाते हैं, तो हम चलते हैं एक गीत का और, तेरा नाम लिया तुझको याद किया, फिल्म के नाम है झनकार, राम लखन और मनहर उदास, अरुणा परवाल का अनुराधा पौधवाल का ये सॉन्ग है यहां से।

और तेरा नाम लिया और तुझे याद किया, और फिल्म के नाम है राम लखन, मनहर दास और अनुराधा पौडवाल का ये सॉन्ग है दोस्तों। साइट मेरे बैठा था पर किसी और के करीब था, साइट जाने मेरे बगल में बैठा था पर किसी और के करीब था, वो अपना सा लगने वाला पर किसी और के नसीब था दोस्तों। प्यार करना तुमने सिखाया, प्यार करना तुमने सिखाया, प्यार पे यकीन करना तुमने सिखाया, सपने सजाना तुमने सिखाया, बस तुम्हारे बिना जीना नहीं सिखाया। और चलते हैं नाइटिंगेल लता मंगेशकर की ओर।

और रुक जा और पवन, फिल्म के नाम है शगिर्त, नहीं का नाइक गिल और लता जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं सुकून मिलता है जब उसने बात होती है, सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, हजार रातों में एक वो रात होती है, निगाह उठा कर जब देखती है वो मेरी

तरफ मेरे लिए वही पल पूरी कायनात होती है। दोस्तों तू निकला छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम, और ये गीत आप लोग को हम सुनाएंगे। फिल्म के नाम है छुपा रुस्तम, अलका याग्निक का ये गाया हुआ सॉन्ग। हम यहां से चलाते हैं।

और तू निकला और छुपा रुस्तम। तुझे भुलाने की मैंने बहुत कोशिश की, तुझे भुलाने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर तेरी यादें गुलाब की वो शक है जो रोज महकती है और रोज महकती ही रहेंगे। क्या खूब रंग दिखाती है जिंदगी, क्या खूब रंग दिखाती है ये जिंदगी, क्या इत्तेफाक होता है प्यार में उम्र नहीं होती, पर हर उम्र में प्यार होते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं दिल विल प्यार व्यार फिल्म के नाम है शगीर ने 1 से 6 तक का ये

और दिल विल प्यार व्यार, और मैं भी क्या जानू दोस्तों कि कहते हैं आप खुद नहीं जानती आप कितनी प्यारी हो, जान तो हमारी पर जान से भी प्यारी हो, दूरियां होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, दूरिया होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, आप कल भी हमारी थी और आज भी हमारी हो। कि नदान आईने को क्या खबर कि एक चेहरा चेहरे के अंदर भी होता है। दोस्तों हम चलते हैं एक सॉन्ग की ओर, फिल्म के नाम है जब जब फूल खिले, और ये गीत को आप मिलकर सुना जाए।

0: नबी अजनबी हूँ दोस्तों कि किसी के प्यार को पा लेना ही मोहब्बत नहीं, किसी को किसी के प्यार को पा लेना ही मोहब्बत नहीं, किसी के दूर रहना पर उसका पल पल याद करना भी एक मोहब्बत है हमारे यारो। कहते हैं कि मैं दिन हूँ मेरा शाम तुम हो, मैं नींद हूँ मेरे ख्वाब तुम हो, मैं लब हूँ मेरी बात तुम हो, मैं तब हूँ जब मेरे साथ तुम हो। फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।
1: राजा, राजा।

0: जॉनी
1: और फिल्म के नाम है जॉनी मेरा नाम। फिल्म के नाम है दोस्तों हम वो नहीं जो तुमसे वो हम नहीं वो हम नहीं जो तुमसे गम में छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो तुझसे नाता तोड़ देंगे है, हम वो है जो तुम्हारी सांसे रुके तो अपनी सांसे जोड़ दे हम। लवली सॉन्ग आज का। यहां से चलते हैं, फिल्म के नाम है अनोखी रात। All is gold, zong, anokhi raat, 1968 ka ye geet hai, Padma Shri Mohammad Rafi ka gaya hua ye zong, aao suna jaye.

और दोस्तों गीतों का गीत मिलाना फूल तो, और फिल्म के नाम पे अनोखी रात का ये प्यार भरी गीत हम आप लोग को सुनाए है हमारे सुनने वालों। और कभी अजनबी का ये सॉन्ग है नीखनी फैफन तख्त का।

और कभी अजनबी थी, और फिल्म के नाम है कभी अजनबी थी। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और हमारा प्रोग्राम चलाना है, हमारा काम यही है, हमारा मोहब्बत भरी पैगाम। यहां से कुछ पुराने नगमे, कुछ नए गाना से आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। हम चलते तुरंत इधर चला मैं उधर चला, फिल्म के नाम है कोई मिल गया। ऋतिक रोशन प्रीति सिन्हा इस फिल्म में काम किया है, इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों क्या किया और क्या किया, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैतिल के लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

देश है मेरा और ऐसा देश है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है। चाहे आप भारत में हो या सूरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है। चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सातो जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिलवाला। कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को गाते हैं।

सुनने वालों, सातों जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म में भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जाए, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सवार। आओ सुना जाए।

बस पालकी में होके और सवारे चलिए। कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहाँ से प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जब आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जब किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

और ऐसी दीवानी और तेरा नाम हमने लिख दिया अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ऋषि कपूर देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी। फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों, आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

चांद कोई दीवाना है और ये चांद कोई दीवाना है। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम है और इस गीत को हमने अपने प्यारे लोगों के लिए चला दिया है। मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को फिर कुछ मनोरंजन को आप प्राप्त करेंगे। और हम चलते हैं, कोई पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेक होता है और कोई पागल होता है। कविता कृष्णमूर्ति का और सबीर कुमार का यह गीत है जिस फिल्म में गोविंदा ने काम किया है और देविया भारती ने। और इस गीत को बोल है तू पागल प्रेमी और आवारा।

दोस्तों और ये गीत क्या होगा दोस्तों, ये कुछ प्यार भरी गीत है और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

0: तेरी कमाल और इस गीत को अलका याग्निक ने और उदित नारायण ने और यानी कि गाया है और फिल्म के नाम है राजा मधुरी ऋषि संजय दत्त का ये फिल्म है दोस्तों, ये फिल्म है दोस्तों।
1: हाँ अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ तो ये है इस तरह से मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नेगन तीन फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए, चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकति एन सैफ का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

0: जा,
1: हम तेरे चिराग है जलाए जा बुझाए जा। तवारिक गवाह है यानी खुशकिद ने इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। और ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने की कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन सस्त सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। जी हाँ,

ललिता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार डुएट आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ है, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य। और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाएं, निकती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए यह शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55fm.internet पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार द्वेत हमने पेश की हो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।